0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन। किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन। स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
2: यार? की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
1: आज सिमी पहन जी आई सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
2: अच्छा, असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता।
1: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0430-8833-11 और विजिट uvfinancial.com.au।
0: मेलबर्न दे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी, तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देने ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वेनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स, असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी कर दे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900, ईमेल sales@ozlintels.au।

ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना। डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ। 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक। हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।

0: प्रीत की होया?
1: ओ इस बार फिर पीटी च बैंड नहीं आए, हुन फिर कोई वीजा नहीं पैना, लगदा इंडिया वापस जाना पैना।
2: जे तुसी भी इना देवां थक चुके हो ता हुणे कांटेक्ट करो ऑस्ट्रेलिया विच परोसे अते तजुर्बे वाले डिजायर माइग्रेशन वालेयां नूं। इना कोल है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी, स्टूडेंट वीजा, TR, पेरेंट्स वीजा अते बाकी सारियां इमिग्रेशन तो रिलेटेड सर्विसेज। नंबर लिखो 045-151-1100, 045-151-1100। Desire migration.
3: जवाकां दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
4: तू तो यार हुणे ही नहीं चाहिए, है तो कहना है एतवार भी स्कूल लगन, मसला तो मौका मिलता रीलां तो बचन दा।
5: अरे बोलो पप्पू दे पापा।
6: इस 8 मई नूं सिनेमा विच रिलीज होण जा रही है नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक, वेखण जरूर आयो।
2: मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स लई खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी इक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देण लई आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वेनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी कर दे हां। कॉन्टैक्ट 04

0: 1023 102 900. Email sales@ozlintels.au.
1: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
4: जदो दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
3: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदने लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04334654 92।
5: क्रिएटिव इवेंट्स लेके आ रहे ने साल दी सब तो इंतजार कीती गई संगीतमय शाम, हेरिटेज टूर 2026, डॉक्टर सतेंद्र सरताज।
6: ओ लावा इश्क दे अंबरी उड़ानियां, मैनू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां।
5: 17 मई 2026 शाम 6 बजे मेलबर्न दी शान रोड लेवर अरेना विच। स्पॉन्सरशिप दी इंफॉर्मेशन लई कॉल करो 04268094999। फॉर टिकट्स विजिट tiktek.com.au।
7: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद इन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 ते
3: 04-33-2802522। रेडीमेड गोल्ड डायमंड सिल्वर ज्वेलरी बनवा सकते हैं कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनोंग। फॉर मोर इन्फो कॉल 04-99-25-35-45 ते।
5: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या Corey नाल, radio हांजी रे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
3: प्रीत, की होया?
8: ओ इस बार फिर पीटी च बैंड नहीं आए, हुन फिर कोई वीजा नहीं पैना, लगदा इंडिया वापस जाना पैना।
5: जे तुसी भी इना दिवांग थक चुके हो ता हुने कांटेक्ट करो ऑस्ट्रेलिया विच परोसे अते तजुर्बे वाले डिजायर माइग्रेशन वाले नु। इना कोल है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी, स्टूडेंट वीजा, TR, पेरेंट्स वीजा अते बाकी सारिया इमिग्रेशन तो रिलेटेड सर्विसेज। नंबर लिखो 04-45-151-1100 04-45-151-1100। Desire migration.
9: ਆ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ?
10: ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੀਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿਵੇਂ?
9: ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਟੀਮ, ਆਲ ਮੇਜਰ ਐਂਡ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪੇਂਟ, ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਮ ਤੇ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 03-83-85-77-48 ਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ, 8 ਗ੍ਰੇਸ ਵੇ, ਰੇਵਨ ਹਾਲ।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: JBCO Films लेके आए ने एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पंजाबी फीचर फिल्म शेरा,
3: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हालात
4: च। स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
5: मैं उत्थों भी मुड़ के हूँ जितों कोई नहीं मुड़ के हूँ।
2: Written and directed by Savio Sandhu. Produced by Anmol Sahni.
4: Hun vekhna na bhulyo 15 Mai to tuhade nedle cinema ghara vich.
0: Ki chahida? Australia da visa launa ja visa layi mashwara chahida? Mil juga. Sidhe aao Garewal Visa Solutions. Australia vich har tarah diyan visa loda layi ik bharose yog na. Jo study visa, skilled visa, employer sponsored visa, DAMA, parent, partner te visitor visa vich deal karde ne. Hune call karo Pritinder Garewal nu 0490-054-596 GarewalVisaSolutions.com.au te jao. Aao, thoda koi hal kariye.

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
1: मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स लई खुशखबरी, तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देण लई आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900, ईमेल sales@ozlintels.au।
2: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार?
3: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है
2: और ये तीसरी
3: दोस्त ही है ना?
4: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
5: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
6: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
5: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदने लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स, वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।
7: क्रिएटिव इवेंट्स लेके आ रहे ने साल दी सब तो इंतजार कीती गई संगीतमय शाम, हेरिटेज टूर 2026, डॉक्टर सतेंद्र सरताज।
8: होलावा इश्क में दे अंबरी उड़ारियां, मैनू प्यार दियां जड़ियां खुमारियां।
7: 17 मई 2026 शाम 6 बजे मेलबर्न दी शान रोड लेवर अरेना विच। स्पॉन्सरशिप दी इंफॉर्मेशन लई कॉल करो 0426-809-499। फॉर टिकट्स विजिट tiktek.com.au।
9: हां जी
10: रेडियो
11: बलदा बिरख हां, खत्म हां बस शाम तीक हां, फिर भी किसे बहार दी करदा उडीक हां। ये गज़ल एक इंसानी उम्मीद दी गज़ल है कि बहुत दुख दियां घड़ियां विच, संताप दियां घड़ियां विच, कहर दियां घड़ियां विच भी इंसानी उम्मीद जिंदगी दा सहारा बनी रहिंदी है। और इस गज़ल दे विच उम्मीद दा रंग जिंदगी तो पार भी पहुँचदा कि मैं तां नहीं रहांगा, मेरे गीत रहणगे, पानी ने मेरे गीत, मैं पानी ते लीक हाँ। और एक खूबसूरत शेयर के जिस नालों मैनू चीर के वंजली बना लिया, वंजली दे रूप विच मैं उस जंगल दी चीक हाँ। तो मैनू इस वंजली दे रूप विच मैं हरेक कलाकार नू, हरेक गायक नू इस वंजली दे रूप विच ही देखदा कि वो जिस जंगल तो विछड़िया हुंदा, जिस तो उदा एक वियोग, एक अलग होण दा एहसास भी हुंदा, लेकिन वो उहदे नाल एक बंसरी वांग हमेशा जुड़िया भी रहिंदा। बंसरी उस जंगल दा हिस्सा भी हुंदी है ते उस जंगल तो थोड़ी जी परे भी। इस गज़ल दे विच एक पूरी कविता दा सिद्धांत है, गायकी दा सिद्धांत है, और एक जो रिश्ता समाज नाल किसे गायक दा, कवि दा, उस रिश्ते नूं भी बयान किया गया।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस।

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: JBCO Films लेके आए ने एक्शन इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट पंजाबी फीचर फिल्म शेरा।
2: 5 साल बाद मुड़िया शेरे ते मुड़िया भी केड़े हालत च।
3: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
4: मैं उत्थों भी मुड़ के जत्थों कोई नहीं मुड़ के होगा।
1: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni.
3: उन देखना ना भूलियो 15 मई तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
6: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
5: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपां बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
7: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद इन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते। मेलबर्न दे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई करदे ने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟੈਕਟ 0423-102-900, ਈਮੇਲ sales@ozlintels.au।
8: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ AI ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡਿਲੇ ਇਨ ਲਾ ਇਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਇਨ ਲਾਈਫ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
9: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
10: हां जी रेडियो।
11: बहुत गुल खिले ने निगामां तो चोरी, किधर जान महकां हवामां तो चोरी। इस गज़ल विच भी जिंदगी दे बहुत रंग हन, बहुत एहसास हन। एक परदेस विच जाके रोल रहे बच्चियां दा बिंब भी इस गज़ल दे विच है। इस गज़ल विच मुहब्बत दा जिक्र भी है। इस गज़ल विच बादशाहां तो चोरी, बल दे बागी चिरागां दा जिक्र भी है। सो ये गज़ल भी अपनी पूरी गजलियत दी रंग विच रंगी हुई है, जिस विच चोरी दा जो रदीफ है उसनू नवाया गया। और इस दे मकते विच मैं अपने आप नू भी मुखातिब किया कि दगा कर रहा है गज़ल नाल पात्र, ये की लिख रहे हैं, भावनावां तो चोरी।

0: order te ready. Purana sona buy back and exchange turant. Cash chahida. Gold loan easy and safe. Repair, bullion buying, selling, sab ek hi jagah. Te OV wajib rate te. Delhi Jewelers. 310/2 Main Street, Point Cook. Call 0493-536-042.
1: Pandey ji, kya tu sala luck paaye ho yaar? Ek dost ke saath pakde gaye aur dusri dost chhudane chali hai. Aur ye teesri dost hi hai na?
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में
3: क्रिएटिव इवेंट्स लेके आ रहे हैं साल दी सब तो इंतजार की गई संगीत मई शाम हेरिटेज टूर 2026 डॉक्टर सत्येंद्र सरताज
4: मई 2026 शाम 6 बजे
3: मेलबर्न दी शान रोड लेवर अरेना विच स्पॉन्सरशिप दी इन्फॉर्मेशन लिए कॉल करो 0426-809-499 फॉर टिकट्स विजिट tiktek.com.au रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंटिनोंग रोड ते तुहानो उड़ीक रहा है फोर्ड रेंजर रेंजर सुपर ड्यूटी एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो बिजनेस फ्लीट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस चेस्टन फोर्ड रेडी सेट फोर्ड
5: की होया इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
6: यार की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया
5: अज सिमी भैन जी आए सी उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता
6: अच्छा असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता
5: जेकर थानू भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au
7: JBCO Films लेके आए ने एक्शन इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट पंजाबी फीचर फिल्म शेरा
8: 5 साल बाद मुड़िया शेरे ते मुड़िया भी केड़े हालत च
9: स्टारिंग परमीश वर्मा सोनल चौहान योगराज सिंह मानव विज अते होर भी उगे कलाकार
10: मैं उठों भी मुड़ के जितों कोई नहीं मुड़ के
7: Written and directed by Savio Sandhu. Produced by Anmol Sahni.
9: Hun vekhna na bhulyo 15 Mai ton tuhade nedle cinema gharan vich.
3: Melbourne de Southeast ilake de sare builders te bricklayers layers layi khush khabri. Tuhade har building de structure di ik majboot neev ate damdar pehchan den layi aa gaye ne Oz Lintels. Oz Lintel supply karde ne sare sizes de galvanized brick lintel, T-bars, equal and unequal angles. ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਟ 0423-102-900 ਈਮੇਲ sales@ozlintels.au
11: ਪੈਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ
12: ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਗੱਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ
13: ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਲੈਵਟਨ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਓਹਨਸ ਰੋਡ ਐਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਮਨਪਸੰਦ ਗੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈੱਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਵੇਕ ਅਪ ਫੀਲਿੰਗ ਟੋਟਲੀ ਰੈਸਟਡ ਸਰਚ ਅਸ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਕਾਲ 0433-465-492
11: ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਹੋਇਆ
14: ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੀਟੀ ਚ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ
5: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ TR ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ 0451-1100 0451-111-100 Desire migration.
15: यार तू इतनी इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
16: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
15: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा
16: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au
15: ਚਲਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਡੀ ਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ ਯੂਨਿਟ 1 19 ਟੂ 25

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 इंश्योरेंस शर्ता लागू
1: वाओ तेरी सब्जी दे खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मेनू भी दस दे सीक्रेट
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट गोल्ड लीफ dairy.com
3: जवाका दी एक्टिंग है कमाल पवेगा हुण धमाल
4: तू तो यार होना ही नहीं चाहिए है तो कहना है एतवार भी स्कूल लगन मसला दा मौका मिलदा रीलां तो बचन दा
5: अरे बोलो पप्पू दे पापा
6: इस 8 मई नु सिनेमा विच रिलीज होण जा रही है नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो
7: पांडे जी क्या तू साला लक पाए हो यार एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना
8: देखिए प्रजापति पांडे उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में
9: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए
10: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है
9: ओ हुन टेंशन नहीं हुन डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया ओही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडी नॉग फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते
11: हां जी ओए

0: इवेंट्स लेके आ रहे ने साल दी सब तो इंतजार कीती गई संगीतमय शाम हेरिटेज टूर 2026 डॉक्टर सतेंद्र सरताज
1: होलावा इश्क दे अंबरी उड़ारिया मैनू प्यार दिया चढ़िया खुमारिया
0: 2026 शाम 6 बजे मेलबर्न दी शान रोड लेवर अरेना विच स्पॉन्सरशिप दी इनफॉरमेशन लिए कॉल करो 04268094999 फॉर टिकट विजिट tiktek.com.au सोना चाहिदा
2: परोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेम स्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 04935360422
3: टेंशन मेरी टेंशन
4: की होया
3: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
4: काका जी टेंशन छड्डो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 04105305303
3: या 90 77 97 33
4: या ईमेल info@vyimmigration.com.au
3: याद रखो 9077973
4: VY Immigration and Education Consultant
3: हर कदम तुहाडे नाल
0: की होया इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
5: यार की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया
0: आज सिम्मी पहन जी आई सी उन्होंने अपना मॉर्गेज UV फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता
5: अच्छा असी भी उन्होंने कॉन्टेक्ट कर दिया फिर ता
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कॉन्टेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम UV फाइनेंशियल सर्विसेज एट 04303183311 और विजिट uvfinancial.com.au

0: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
1: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने।
2: सूरज देवता
1: की मतलब?
2: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्होंने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
1: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
2: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-06-494 ते। साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
0: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोरी नाल, Radio हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल की free service। Chadston Ford, ready, set, Ford। प्रीत की होया?
3: ओ इस बार फिर पीटी च बैंड नहीं आए, हुन फिर कोई वीजा नहीं पैना, लगदा है इंडिया वापस जाना पैना।
0: जे तुसी भी इना दिवांग थक चुके हो ता हुने कांटेक्ट करो ऑस्ट्रेलिया विच परोसे अते तजुर्बे वाले डिजायर माइग्रेशन वाले नु। इना कोल है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी, स्टूडेंट वीजा, TR, पेरेंट्स वीजा अते बाकी सारिया इमिग्रेशन तो रिलेटेड सर्विसेज। नंबर लिखो 0441-1100, 0451-1100। Desire Migration, Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपने आदा एक मजबूत कर। House and Land Experts Orbit Homes अपने 44 वर्यां ते तजुर्बे नाल थनु दिंदे ने 100% fixed price guarantee with an industry leading 24 month price lock। अज ही पहुंचो Orbit Homes Display Centers या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।

दुनिया तो गया पूरे 8 साल हो गए। विछड़गिया की कमी शायद अक्सर ही आप महसूस करते रहने, वो भी जदों कोई चंगा होवे बहुत वधिया होवे। जदों भी घर कोई चंगा काम हुंदा मैं उन्हें जरूर याद कर लैनी हां, नाल अपने सहुरा साहब नूं भी याद करती हां। ते सरदार साहब कह दिंदे ने जगमीत मैं अपने मम्मी पापा नूं उन्ना याद नहीं करता, उन्ना शायद प्यार नहीं करता जिन्ना तूं हर वेले कर लैनी हां। मेरा विआह बड़ी छोटी उम्र च हो गया सी, 19 साल की उम्र सी। छोटी उम्र होण करके शायद मैनू ज़्यादा प्यार मिलिया, मेरे उत्ते ज़्यादा जिम्मेवारियां का बोझ नहीं पाया गया। उहदा सिरा मेरी सस दे सिरी ते जांदा, नरमे कमावां चुकन दा जदों टाइम आउंदा तां पहले दिन मम्मी चोणियां दे नाल जांदी, धूफ करके लड्डू वंट के चोणियां नूं चुगन ला दिंदे। उहनां दे जाण तों बाद ये सब हुण सरदार साहब करदे ने। अज सवेरे सरदार साहब चूणियां लैके आए सी, मैं पल्लियां धूप ते लड्डू फड़ाउंदिया कहा आ सारा समान तैयार है सरदार जी। सरदार साहब ने सारा समान फड़िया ते चूणियां विच्चों एक चुलबली जी लड़की जिसकी उम्र मसा ही 27-28 साल की सी, कहन लगी दीदी तुसीं वी तां चलो साडे नाल, तुसीं वी खेती जाया करो। उहदी गल सुन के सरदार साहब भी कहन लगे चल आ जा, ते उहनां दा क्या मैं भी नहीं टाल सकी। नाल बह गई ट्रैक्टर दे उत्ते। ये सब कुछ मेरे लिए नवा सी, पहली बार सी। विआह तो बाद 25 साल बीत चुके सी, अज पहली बार मैं खेतां नूं जा रही सी नरमा चुगण। ये मेरे लिए एक बड़ा वखरा ते बड़ा वधिया तजर्बा सी। जदों असीं खेत पहुंचे तो मम्मी जी वाली रसम अज मैं निभाई। उस तो बाद जदों कपाह चुगण की वारी आई तो एक कपड़ा लैके उन्हां चोणियां की देखो देख मैं भी नरमा चुगण लग पई। मैनू आ दसो आ किवें आ क्यों होया, निके निके सवाल मैं उन्हां नूं पुछदी रही। उन्हां ने मैनूं सब दस्या, झोली किवें बन्नी दी है, नरमा किवें तोड़ी दा, को फुट छुट ना जावे उहदे लई की करना। उह मैनूं वेख के लगातार हसदियां, कई दूरों वेख के मुस्कुराउंदियां। मेरी होई गलती दे उत्ते ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। एक सोहना एहसास जरूर हुंदा सी जिदा जिदा फुट चुके चुन्नी दे पल्ले दे विच पौंदी। सरदार साहब ने वेख्या कि हुण इहदे लई औखा हो रहा, उन्हां ने भी आवाज मार दित्ती ओ रहण दे तेरे वस दा रोग नहीं आ, गर्मी बहुत आ, एवें किते बीमार ना हो जी, आ जा मंजा डाह ता टाली थले इत्थे आ के बैठ जा। मैं भी तां जिदा इहो ही इंतजार ही कर रही, कोई कवे भी जाके शामे बह जा, पर फिर भी मैनू लगता सी की कहणगियां कुड़ियां, बड़ी छेती भज गई सरदार ने। कोई अद्धा पौना घंटा लाया होना, फिर गर्मी ने अपना रंग भी विखाउणा शुरू कर दिता सी। काली दे नाल जाके टाली हेठां डठे मंजे दे उत्ते बैठ गई। 3 बजे सरदार साहब गए ते घर जाके चाह बनवा लिया, चाह पीने लई चोणियां नूं आवाज मारी। मैं वेख्या

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडिनोंग रोड ते तुहानो उड़ीक रहा है। फोर्ड रेंजर रेंजर सुपर ड्यूटी एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो। बिजनेस फ्लीट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल। रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड रेडी सेट
2: जवाका दी एक्टिंग है कमाल पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
0: मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वेनाइज्ड ब्रिक लिंटल टी बार्स इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल वी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900 ईमेल sales@ozlintels.au।
3: की होया इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
4: यार? की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
3: आज सिमी पहन जी आई सी उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
4: अच्छा असि भी उन्होंने कॉन्टेक्ट कर दे फिर ता।
0: जेकर थानो भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कॉन्टेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au। प्रीत की होया?
5: ओ इस बार फिर पीटी च बैंड नहीं आए हुन फिर कोई वीजा नहीं पैना लगदा इंडिया वापस जाना पैना।
0: जे तुसी भी इना देवान थक चुके हो ता हुने कांटेक्ट करो ऑस्ट्रेलिया विच परोसे अते तजुर्बे वाले डिजायर माइग्रेशन वालेयां नु। इना कोल है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा परमानेंट रेजिडेंसी स्टूडेंट वीजा टीआर पेरेंट्स वीजा अते बाकी सारिया इमिग्रेशन तो रिलेटेड सर्विसेज। नंबर लिखो 0441-1100 0451-111-000 Desire Migration।
6: हमारे समाज में टीचर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे कई लोगों को प्रेरित प्रोत्साहित करते हैं और उनके जीवन में वास्तविक प्रभाव डाल रहे हैं। यहाँ विक्टोरिया में विभिन्न पृष्ठभूमियों से संबंधित टीचरों का होना महत्वपूर्ण है और इससे विद्यार्थियों की शिक्षा में लाभ मिल सकता है। यदि आप या आपका कोई जानकार यहाँ विक्टोरिया में टीचर बनना चाहता है तो कई प्रकार के टीचिंग कोर्स उपलब्ध हैं। आप स्कॉलरशिप के लिए भी पात्र हो सकते हैं ताकि आपको हाई स्कूल टीचर बनने में सहायता मिल सके। टीचिंग में करियर बनाए इससे जुड़ी और अधिक जानकारी का पता लगाने के लिए टीच द फ्यूचर सर्च करें। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा प्राधिकृत।
7: तुसी सुन रहे हो इस प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट।

0: की होया इनी टेंशन क्यों लेती हो ये
1: यार की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं पड़या
0: आज सिमी पैन जी आई सी उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता
1: अच्छा असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au प्रीत की होया
2: ओ इस बार फिर पीटी च बैंड नहीं आए हुन फिर कोई वीजा नहीं पैना लगदा है इंडिया वापस जाना पैना
0: जी तुसी भी इना देवांग थक चुके हो ता होने कांटेक्ट करो ऑस्ट्रेलिया विच परोसे अते तजुर्बे वाले डिजायर माइग्रेशन वाले नु इना कोल है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा परमानेंट रेजिडेंसी स्टूडेंट वीजा टीआर पेरेंट्स वीजा अते बाकी सारिया इमिग्रेशन तो रिलेटेड सर्विसेज नंबर लिखो 0 45 151 1100 0 45 151 1100 Desire migration. जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252।
3: JBCO Films लेके आए ने एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पंजाबी फीचर फिल्म शेरा।
4: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हालतां च।
5: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
6: मैं उत्थों भी मुड़ के जित्थों कोई नहीं मुड़ के।
3: Written and directed by Savio Sandhu. Produced by Anmol Sahni.
5: Un vekhna na bhullyo 15 Mai to tuhade nedle cinema ghar vich.

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: हाँ जी हाँ जी ओए हाँ जी हाँ जी
3: हाँ जी रेडियो

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए
3: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है
2: ओ हुण टेंशन नहीं हुण डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी वी तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडी नॉग फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
1: सूरज देवता
0: की मतलब?
1: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो जदा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
0: मैनू नहीं पता, आपां भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
1: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। आओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नी
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तो आडे नाल।
2: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
3: हां जी।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

अकाल मूर्त अजूनी सैपं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लहवार, चुपै चुप न होवी जे लाए रहां लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सह सियान पालक होए ता एक न चले नाल। किव सचियारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल, हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है।

एक बार जो तुझ पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर

पाए जाए। ए अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। ए वड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जे वड आप जाने आप आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगे।

दुख भूख सदमार ए बेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए और आख न सके कोए जे को खाए आखन पाए ओ जाने।

आप श्री मुखवाग्पाद सहित छपे छंतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जात हर पात नय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशन तो कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सहान गणित जाय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत मंत्रन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अबारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संयोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अभेशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अभेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वदंदे नमो सत्वंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले चात्री छंतो प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं

श्री कहे निर्लंब है असंभ है, अगम है अजम है, अभूत है अजूत है, अलोक है अशोक है, अकर्म है अभ्रम है, अजीत है अभीत है, अबाह है अगा है, अमान है निदान है, अनेक है फिर एक है, प्रियांक प्रिया छंद।

दे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ती प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो।

अप्रेत देवेशु तर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिर्ध करदा अधो उर्ध अर्धंग अगोग हर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सत दाता दयारं अछेति अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियंपुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ते निदाने नमस्तंग निनाथे नमस्तंग परमाथे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अकाले नमस्तंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो सा साय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्वतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्व दिशंग नमो सर्वोत्कृष्टंग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रनाशी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अरना पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तत्र दिशा विशा हो फैलो न राग नाम काम बहिर पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेदर्क तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मर महीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्यो सुजंभव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्व गंजन दुष्ट पंजन मुकदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपे सर्व शास्त्र न जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनाथ

लान कान अनुभूत अंग अभाव अंगत में तो पार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदि श्री धर्म सर्वां बरनाडिये अंडंड बांडिये चाचरी चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निरनामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृश्य अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते कि आछे जदेश के।

कृतं कृति हैं कि छत्रं छत्री हैं कि ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव हैं कि आप अभेव हैं कि चक्रं बहीन है कि एक अधीन है कि रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राजग्रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दानी है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मानी है सदैव प्रदानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीम है के परमं फहीम है के अकाल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम है सलीख मुदाम है गरीब उल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीज़ुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीज़ुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम प्रनाश है पृथ्वल प्रवास है निरकत प्रवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत प्रवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नर गनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमित अमिक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसन चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सकन है हिरासल फकन है कलंकम प्रनाश है सुमस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है सुमस्तल जुबा है के साहिब की राह है के नरकम प्रनाश है बिस्तल निवास है के सर्वर गवन है के हमेशा रवन है तमाम तमीज है समस्त अधीश है परंग परंग ईस है समस्त अधीश है अदेसल अलेख है अभेसल अभेक है जमीन जुमा है अमीक नुमा है करीमल कुमाल है के जुर जमाल है के अचलंग प्रकाश है कृमित्व सुभाष है के अजब स्वरूप है।

गण मुदाम अर बार गंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुण गण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

बड़े बड़ियार अवचार इसार की धार बछैया तोर देश बुलंद बवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोरन हर सुबातन ही चकचार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फिनन निशाचर पूत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रताप अनबार जय तुन पापन के बो पुंज कपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सवै अब लोग जपेंगे मानव इंद्र गजिंद निरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत बसे जम्फास।

0: नहात फिरयो लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे बैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सबै तुम कावो आप हाथ दै मोहि बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा निज कर दै करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिय चुन चुन सत्र हमारे मारिय आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझो करियो रक्षा राख लियो मोय राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत टीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरत निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड।

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोय तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा। अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी। कहो फू राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता। जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख है मरे। पुरख जवन पाग परे त्योहारे, तिन के तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार त्योहार है, ताके काल निकट नहीं आए है। रक्षा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे न।

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास, आपके दिन में एक नई ऊर्जा भरने के लिए। हमारे शास्त्रों से मोती चुन चुन कर लाना ही दास की सेवा है। आप घर से जब भी अपने कामकाज, ऑफिस, स्कूल के लिए निकलें, भगवान का आशीर्वाद लेकर ही निकलें। घर वापसी पर उसी भगवान का थैंक यू करना भी मत भूलिए। ऐसा करने से हमारे और भगवान के बीच की दूरी कम होगी, हमारी निष्ठा और बढ़ेगी, हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। भगवान हर क्षण हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। हो सकता है आप में से कईयों के साथ ऐसा अनुभव हुआ है कि आपने भगवान से प्रार्थना की हो, कुछ मांगा हो, कभी मिला ही नहीं। क्या भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर अनदेखा कर देते हैं? जानते हैं छोटे से अंतराल के बाद। आप जुड़े रहिए पुण्य दर्शन के साथ।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप अपने दास के साथ। तो क्या भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर अनसुना कर देते हैं? क्यों नहीं सुनते? प्रश्न का उत्तर है, भगवान सुनते हैं, किंतु हर प्रश्न का उत्तर हां में नहीं देते। हम कुछ भी मांगे तो देने में हो सकता है देरी कर दें, डिले कर दें, कभी तो तुरंत ही दे देते हैं, और कभी जो मांगा हो वो ना देकर कुछ और ही दे देते हैं। एक पिता को पता है कि उसके छोटे से बच्चे के दांत में कीड़ा लग चुका है, उसका उपचार डॉक्टर से करवाया जाएगा। डॉक्टर ने मीठा, चॉकलेट, टॉफी आदि खाने से परहेज बताया होगा, तो उसका भी खास ध्यान रखा जाएगा। अब बच्चा बार बार चॉकलेट मांगे, जिद करे, रोए, बिलखे, और ये भी सोचे कि पापा कितने बुरे हैं, मेरी एक भी बात नहीं मानते, वो तो नादान है, बच्चा है, किंतु आप तो बड़े हैं, समझदार हैं, क्या आपको भी लगता है बच्चे का पिता उसकी बार बार प्रार्थनाओं को अनसुना क्यों कर रहा है? इसका जवाब सोचिए, मैं यूं गया यूं आया, मिलकर खोजते हैं इसका उत्तर।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो आपने भी ये वाला एक्सपीरियंस किया है, आप भगवान से कुछ मांगते हो या प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते ही नहीं, जैसे उस छोटे बच्चे के पापा उसकी सुन नहीं रहे। वो एक छोटी सी चॉकलेट ही तो मांग रहा है, किंतु उसके पिता जानते हैं इस समय जब उसके दांतों में कीड़ा लगा है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, मीठा खाने के लिए मना किया हुआ है, तो चॉकलेट बच्चे के लिए इस वक्त उचित नहीं है। जो ये बात बच्चा नहीं जानता, वास्तव में पिता बच्चे की हर बात, हर प्रार्थना, रोना धोना सब सुनता है, किंतु फैसला उसके हिसाब से नहीं लेता। ठीक वैसे ही भगवान भी हमारी एक एक प्रार्थनाओं को सुनते हैं, किंतु निर्णय केवल हमारे हिसाब से नहीं, बल्कि जो हमारे लिए हित में है, हमारे भले के लिए है, हमारे लिए सबसे बेस्ट है, वो ही निर्णय भगवान लेते हैं। तो मित्रों, अब से जब भी आपकी प्रार्थनाओं को अनसुना किया जा रहा हो तो ये मत सोचिए कि भगवान हमें इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि ये विश्वास रखिए कि वे हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते। किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू एथे प्रदेस विच समझाऊंगा किवें?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का वे हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो।

0: वाह भाई वाह,
1: मेरी माँ
0: क्या बात है,
1: मेरी
0: मतलब
1: माँ
0: नाइस।
1: मेरा पिता, मैं अपने पिता नु कर दिए प्यार, होके आवे त्यार श्यार, सोना है ओ चंगा है जगदा है, मेरा पिता मेरा पिता मेरा पिता।

0: Happy birthday to me. थैंक यू श्रेया, ये ते तड़ा एआई ने ना सब तो बेस्ट गाना बनाया वा।
1: Like she's 4 years old. Next, you know, she's a birthday. She's 5 years old.

0: बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो। फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने। बंसल लॉयर्स, तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: विक्टोरिया दा बिग बिल्ड खतरनाक अते पीड़ पड़के वाले 110 रेलवे फाटकां नूं हटा रहा है, जिस विचों 88 पहले हटा दिते गए हन। बेहतर कनैक्शन बनाउणा ते तुहाडी यात्रा नूं सुरक्षित अते सौखा बनाउणा। मई विच फ्रैंकस्टन अते स्टोनी पॉइंट लाइनां ते रेल गड्डियां दी थां बसां चलणगियां। देरियां तों बचो अते चलण तों पहलां bigbuild.vic.gov.au ते जाके देख लो। विक्टोरिया सरकार, मेलबर्न द्वारा अधिकारित।
2: एक अजिही दुनिया जिथे जिराफ हुण सब तों उच्चे जानवर नहीं हन। ज़ूज़ विक्टोरिया मान नाल चिड़ियाघर विच डायनासोर्स नूं पेश करदा है अपने सारे मनपसंद जानवरां दे विच। 3 चिड़ियाघरां विच 60 तों वध असली आकार ते डायनासोर्स दे नाल एक पुरातन इतिहासिक मुहिम लई तैयार होवो। मेलबर्न चिड़ियाघर, वेरीबी ओपन रेंज चिड़ियाघर अते हिल्सविल सेंचुरी दे विलखण बाहरी वातावरण विच एनिमेट्रॉनिक जीवां नूं जिउंदे जागदे वेखो। चिड़ियाघर विखे डायनासोर्स सिर्फ सीमित समय लई हन। आज ही अपनी मुहिम दी योजना बनाओ।
3: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ। 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक। हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
4: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
5: की होया,
4: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
5: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
4: या 90-77-97-33
5: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
4: याद रखो 9077-9733।
5: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
4: हर कदम तुहाडे नाल।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। मेलबर्न दे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी कर दे हां। कॉन्टैक्ट 0423102900, ईमेल sales@ozlintels.au।
2: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
0: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
2: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदने लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433465492।
0: की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हुई है?
3: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
0: आज सिमी पेंजी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
3: अच्छा, असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दें फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 विजिट uvfinancial.com.au।
4: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
5: नीरू
4: बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी

ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू। किचन द स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।

0: JBCO Films leke aaye action, emotion ate full on entertainment. Punjabi feature film Shera.
1: 5 saal baad mudiya Shera. Te mudiya vi kede haath ta.
2: Starring Parmesh Verma, Sonal Chauhan, Yogra Singh, Manav Vij ate hor vi ugge kalakar.
3: Main utthon vi mud ke jithon koi nahi mud ke hunda.
0: Written and directed by Savio Sandhu. Produced by Anmol Sahni.
2: Hun dekhna na bhulyo 15 mai ton tuhade nedle cinema gharan vich
0: Shera. Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद इन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 क्रिएटिव इवेंट्स लेके आ रहे ने साल दी सब तो इंतजार कीती गई संगीतमई शाम हेरिटेज टूर 2026 डॉक्टर सतेंद्र सरताज
4: होलावा इश्क दे अंबरी उड़ानियां मैनू प्यार दियां जड़ियां खुमारियां
0: 17 मई 2026 शाम 6 बजे मेलबर्न दी शान रोड लेवर अरेना विच स्पॉन्सरशिप दी इनफॉरमेशन लिए कॉल करो 0426-809-499 फॉर टिकट्स विजिट tiktek.com.au
5: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने
6: सूरज देवता
5: की मतलब
6: ओ कमलिए सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई
5: मैनूं नहीं पता आपां भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे
6: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल कॉल सन करंट 0448-066-494 ते साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी
0: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे लई मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसे योग ना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596 garewalvisasolutions.com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए
7: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले याद रखो टायर फोर्स जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 0390866655 और विजिट tyreforce.com.au

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। मेलबर्न दे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी कर दे हां। कॉन्टैक्ट 0423102900, ईमेल sales@ozlintels.au।
2: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
0: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
2: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433465492।
0: की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हुई है?
3: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
0: आज सिम्मी पेंजी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
3: अच्छा, असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 or visit uvfinancial.com.au।
4: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
5: ਨੀਰੂ
4: ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਵੀ।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनू बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: इन टेंशन क्यों लेती हुई है
1: यार की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया
0: आज सिमी पैन जी आई सी उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता
1: अच्छा असि भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252 सोना चाहिदा
2: भरोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042
3: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने
4: सूरज देवता
3: की मतलब
4: ओ कमलिए सन करंट वालियां तो जद्दा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई
3: मैनू नहीं पता आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे
4: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल कॉल सन करंट 0448-066-494 ते साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।